111 में मैं नीलमल काने आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, मन की बात के विस्तार इस कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं उन हस्तियों की, उन घटनाओं की, उस शख्सियत की जो किसी न किसी प्रकार हमें प्रेरित करती है और हमें एक नया पक्ष जानने के लिए भी आगे बढ़ने का अवसर देती है, हमें कुछ पढ़ने का अवसर देती है, कुछ जानने का अवसर देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं।

0: संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदीप जी आपका स्वागत।
2: धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन।
0: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर की लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
1: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि आप बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वो बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत एक उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी,

0: थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी आज की शब्दावली में, जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो
1: जी
0: वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं
1: जी
0: उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखें, अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है,
1: जी
0: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के
1: जी
0: साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो हम दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं,
1: जी
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले
1: जी
0: कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं। उत्तम कुमार
1: जी
0: सिनेमा के उत्तम है,
1: जी
0: सर्वोत्तम है।
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम। जी बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा
1: जी
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उस
1: जी
2: पर हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसीलिए बनाई उनको ध्यान में रखकर,
1: जी
2: तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप
1: जी
2: ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको
1: जी
2: दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला, जबकि
1: जी
2: उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो
1: जी
2: ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
1: जी
2: लेकिन
1: बिल्कुल
2: उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह के सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या
1: जी
2: दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी,
1: जी
2: कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका, नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे ने इस तरह की इसकी फिल्म बनाई कि एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कल कलकत्ता से, आप सो कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार इनको मिलती है, शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों भी जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा भी नहीं फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी उन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह वो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार
1: उत्तम कुमार में
2: उत्तम कुमार ने देखी निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई
1: जी,
2: निर्माता दर्शक इतनी की और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक

0: उस ग्रुप में भी काम किया,
1: जी
0: रिलेशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कलाएं और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, तो
1: जी
0: इतना सैलाब था, जनसैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जनसैलाब बहुत किसी अभिनेता के ऊपर शायद कभी ना देखा गया हो।
1: जी
0: बाद में तो हम चाहे अब नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस
1: जी
0: समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई
1: जी
0: उनकी फिल्म,
1: बिल्कुल
0: कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अनछुए पहलू थे, और
0: बिल्कुल
1: अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे,
0: बिल्कुल
1: इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो
0: बिल्कुल
1: तुरंत वहां पहुंचे।
0: हाँ
1: जी
0: ये
1: यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए, उनके मेरे को कई गाने पसंद हैं, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म,
1: जी
0: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी।
1: जी
0: और जो मुझे अभी तक याद है, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहाँ इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहाँ खूब चली। और उत्तम कुमार भी बहुत खुश थे देखकर कि
1: जी
0: मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई,
1: जी
0: और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई। अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो
1: जी
0: वहाँ बंदी वहाँ चली, यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहाँ भी चली और यहाँ भी चली। तो
1: जी
0: उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो
1: जी
0: अमानुष का टाइटल सॉन्ग है
1: जी
0: और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
1: दिल
0: उस
1: ऐसा किसी ने
0: दिल
1: मेरा तोड़ा।
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
1: जी
0: आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, शिवा
1: जी
0: टैगोर पीछे लेटी हुई है, और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है,
1: और
0: लेकिन बाद में
1: ये शब्द भी अमानुष
0: अमानुष
1: जो
0: बना के छोड़ा। अमानुष
1: जी
0: मतलब अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति
1: जी
0: हो, जो
1: जी
0: अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं।
2: अमानुष जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के। क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से,
1: जी
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी, तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर, जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहां,
1: जी
2: क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे या
2: नायक की
1: नहीं।
2: छवि से जोड़ पाएंगे, जो
1: जी
2: सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम
0: असल
2: कुमार
0: में
2: जी
0: इनका
2: की,
0: जो है उसके अंदर एक
2: है
0: शराबी,
2: ना।
0: एक ऐसा व्यक्ति है
2: हाँ
0: जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मे टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है
1: जी
0: वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए हो रहे हैं,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने लिखी,
2: हाँ लिखी लिखी
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में,
1: जी
0: जो भी फिल्में आई वो कमलेश्वर ने लिखी।
1: जी
0: तो
1: यानी ये
0: ये
1: गीत हमें
0: गीत
1: बहुत
0: तो
1: सारी कहानियां
0: बहुत
1: एक
0: ही
1: साथ
0: सारी
1: देता
0: कहानियां
1: है।
0: जोड़ता
1: जी
2: है। मैं उसमें
1: हाँ
2: यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी
2: कि
1: बिल्कुल
2: ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, और यह फिल्म बहुत पसंद की
0: अब
2: गई।
0: देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी
0: अमानुष
1: तो
0: का।
1: ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था, तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जो घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है,

0: जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से,
1: जी
0: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे।
1: जी
0: आज़ादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन
1: जी
0: होने वाला था उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था।
1: जी
0: तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था और लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है।
1: जी
0: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई। 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया, और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं।
1: जी
0: जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं,
1: जी
0: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे।
1: जी
0: इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से,
1: जी
0: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब।
1: जी
0: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया, वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने
1: जी
0: वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर, वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित
1: जी
0: करवाते थे, उनको देते थे, और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है।
1: जी
0: तो ये सारी चीजें ऐसी है, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है, ये
1: जी
0: आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की।
1: जी और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते
0: हाँ,
1: थे, आर्थिक मदद करते थे।
0: करते थे।
1: जी
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे,
1: जी
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं,
1: जी
0: इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी, और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी,
1: जी
0: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो
1: प्रदीप जी आपसे
2: 1971 की जो वार थी उसपे उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया,
1: जी
2: उनके परिवार के लिए, जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके
0: सेवेंटी
2: कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी
0: एट
2: बहुत दिया,
1: जी
2: तो ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है कि 5,000 रुपये उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी।
1: जी जी प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी, और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना
2: नहीं,
1: चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली
1: जी
2: देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो
1: जी
2: बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई, और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई, तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें, जो
1: जी
2: बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते 10 बात याद आ जाती है, अब ये बोल रहे तो वो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए, वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई, और उसको

0: फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था।
1: जी,
0: तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने। की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हों, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाएं, सब जगह देखे जाएं। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ कर उनको फूल दिया। सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और संग राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था। तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई, और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। विजयंती माला से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती है कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया। तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई, विजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडिया कर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा जी, शताब्दी का
1: जी, इस अर्ध शताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती, उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी

0: रीमेक बना,
1: जी
0: जो उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया।
1: जी
0: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था, जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी। और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से, जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था, छोटी सी मुलाकात, जिसमें वो खुद ही थे।
1: जी
0: लेकिन इसके अलावा दूसरी

0: थी,
1: हाँ
0: जी
1: उपन्यास पे थी।
0: उपन्यास
1: जी जी
0: पर
1: जी
0: आधारित
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही
0: बहुत अच्छी
1: क्लासिक फिल्म है,
0: जी।
1: बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी,
0: जी।
1: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना,
0: तो चुपके चुपके
1: ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो
0: जी।
1: फिल्म, जिसका नाम चुपके चुपके है, और
0: जी
1: धर्मेंद्र उसमें
0: परिमल त्रिपाठी का
1: परिमल
0: किरदार जो
1: त्रिपाठी
0: है
1: का रोल में आते हैं,
0: वो
1: और
0: सबके
1: धर्मेंद्र की वो
0: नजदीक।
1: बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में, अगर अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं, तो उसमें
0: जी।
1: चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से,
0: जी
1: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं।
0: जी
1: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम
0: उत्तम
1: कुमार
0: कुमार
1: जी ने
0: ने
1: निभाया
0: जी।
1: था।
0: और अंगूर तो बहुत
1: अंगूर,
0: चर्चित फिल्म
1: गुलजार
0: थी
1: साहब की अंगूर,
0: जी।
1: वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये
0: वैसे
1: देखते
0: वो
1: हैं।
0: शेक्सपियर के उस पे थी जी,
1: जी जी
0: कॉमेडी
1: जी
0: ऑफ
1: कॉमेडी
0: एरर्स
1: ऑफ एरर्स
0: जी
1: पे,
0: जी
1: लेकिन उसको बंगला में बहुत चली वो। इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं।
0: जी
1: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
0: वैसे ही
1: जी
0: धोती कुर्ता बांधा उन्होंने,
1: धोती
0: जैसे
1: को
0: उसमें बांधा था।
1: जी वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और राजेश खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक
0: जी।
1: भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए, उस वक्त जिस
0: जी
1: समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था,
0: जी।
1: माने
0: और इसका
1: देव।
0: इसका ये बता दो, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के,
1: जी
0: वो भी हुगली में वहीं पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहां वो जी
1: किया गया। और
0: मतलब
1: सिमरिया टैगोर बता रही थी कि
0: जी।
1: वहां इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। कहती हमने उसमें भी काम किया, 5 दिन हमने उस गाने को शूट किया वहां पर,
0: जी
1: उसके
0: ये
1: अंदर
0: उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था
1: प्रभाव था
0: उस
1: सर,
0: समय
1: प्रभाव था।
0: जी।
1: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और
0: जी
1: बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया।
0: जी
1: राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
0: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है। एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
1: देखिए, पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा,
0: जी।
1: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चटर्जी जैसे आप जानते हैं, दोनों
0: जी
1: बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण
0: जी
1: कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे, 5 साल छोटे थे इनसे,
0: जी
1: और उन्होंने वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है, तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो इनकी फिल्म थी 1948 में दृष्टिडान,
0: जी
1: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से,
0: जी
1: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही,
0: जी
1: उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले।
0: जी
1: उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की,
0: जी
1: उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके
0: जी
1: बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके
0: जी
1: बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था।
0: जी
1: आप देखिए, इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो ये सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह माना एक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको
0: जी
1: हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, या
0: जी
1: जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत वीर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी,
2: जुड़े रहे, तो दोनों सिनेमा से और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पुत्र

0: भी जो है उत्तम कुमार के, वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है, कि बाकी और एक बेटा था उनकी डेथ हो गई बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो, इनके जो फादर थे हमारे, सिनेमा था इंदिरा सिनेमा, उसके
1: जी
0: अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देख कर, ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो
1: जी
0: मैं थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टि जान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम
1: जी
0: याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके
1: जी
0: उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको
1: जी
0: भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको
1: जी
0: जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, कि उत्तम कुमार कौन है, नई
1: जी
0: पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा रहे, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने,
1: जी
0: और जैसे
1: और
0: बताया
1: संजीव कुमार जी से चेहरा
0: संजीव कुमार
1: मिलता
0: साहब,
1: था
0: देखिए जो
1: तो
0: आदमी
1: उनसे भी
0: फिल्म
1: जोड़ते
0: है
1: हैं लोग।
0: वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी, और
1: जी
0: कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले, उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया,
1: जी
0: जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो
1: किस
0: रहे।
1: फिल्म में?
0: आंधी फिल्म में,
1: आंधी में।
0: नाइनटीन
1: जी
0: सेवेंटी थ्री में जब ये
1: जी
0: फिल्म हुई, तो वो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें, तो
1: सुचित्रा सेन के
0: सुचित्रा सेन
1: साथ।
0: इसके अंदर थी, और
1: जी
0: सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह का।
1: जी
0: तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और
1: जी
0: शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो इनकी दो अभिनेत्रियाँ तो उनकी बहुत ज़्यादा रही जो इनकी इस तरह। बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ
1: जी
0: बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का,
1: जी
0: फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो
1: जी
0: इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया दूसरे ने ज्यादा कमाया तीसरे कम कमाया,
1: जी
0: तो इस तरह आता था कि बहुत तो आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में रंगमंच में बहुत काम किया, रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों
1: जी
0: ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया,
1: और उस
0: जेनिफर,
1: समय रंगमंच जन जागरण का कार्य
0: हाँ
1: करता
0: उनकी
1: था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी
1: जी
0: उनको शशि कपूर को वहीं मिली, क्योंकि वो थिएटर करती थी उन अपने
1: जी
0: फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करते थे। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है, मैं तो
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, तो जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, रंगमंच के अंदर
1: जी
0: उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहां रहा जिस जिसने फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो
1: जी
0: इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर, कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा
1: सांस्कृतिक
0: की
1: राजधानी भी कहा
0: राजधानी है
1: जाता था।
0: संस्कृति की।
1: जी बिल्कुल
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें,
1: जी
2: और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे,
1: जी
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूं जो मैं चाहता हूं उसे मेंशन करूं, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी
2: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव,
1: जी
2: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने, भूपेन
0: भूपेन
2: हजारिका
0: हजारिका को भी
2: जी
0: याद
2: जी
0: किया।
2: उन सबको उन्होंने मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है, और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं
1: जी
2: तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि
1: जी
2: सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और
1: जी
2: दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर

0: है इंडिया की,
1: जी
0: उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है,
2: राज कपूर तो ऐसे हैं, उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
1: जी,
2: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो भी सॉफ्ट पावर की चर्चा
1: बिल्कुल
2: की,
1: कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
2: राज कपूर भी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर, दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े, जिनको बुलाया जा सकता, दोनों ने अभिनय, सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते, उनकी अब जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की, वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है, अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सब की हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना, तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना, और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी, और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है, और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो, और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे, और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छी दिशा मिलती है, और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था, ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
1: जी।
0: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, सामाजिक काम करते हुए
1: जी।
0: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: इस तरह के कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
1: जी।
0: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन ज़ी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी
0: कि ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
1: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो

0: कैसे आगे बढ़ें?
1: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
0: जी।
1: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है। यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते
0: जी,
1: हैं।
0: लेकिन बहुत
1: हमने क्या
0: कि
1: देखिए, हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में
0: जी।
1: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था। हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जो मेरे गुरु रहे हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है कि उनके मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल दे, परसों दे, तरसों दे, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए तभी का तभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, ताराचरण बड़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। ताराचरण बड़ियाती जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसकी स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं, उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए जनपद पे गाड़ी रोक कर, जब ने रिकॉर्डिंग कर आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सराह ली जाती थी कि आप जानते हैं सिनेमा देखते हैं लोगों की नब्बी पहचानते हैं तो आप बताइए क्या है, हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे नहीं नहीं क्या फिल्म चित्रा बनाया चलेगी नहीं यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बड़जातिया थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे को फोन आया, मैं आप चिंता मत कीजिए ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें ये नहीं कि उसने क्या बोला मैंने क्या बोला उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए, हम आपके कौन के लिए सब लोग बोल रहे थे मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसे होगा पोस्टर दिखाया ये होगा। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवा हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए पॉपुलर हो जाए बहुत सारे पैसे कमा लें, एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। इसे आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पे लोग ट्रस्ट करें, तो हमें अच्छा लगता है कि आज भी हमारी बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि जैसे प्रदीप सदा ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाएं, हवा हवाई बातें ऐसे ना करें कोई भी, अपना जो भी लिखे हैं जो भी बोले हैं जो भी करते हैं बहुत ही ईमानदारी से करें, आपको भी जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें, ये सबसे मैं चाहूंगा
0: जी।
1: ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें, ये नहीं कि आपने लिख दिया तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी पहचान होगी।
0: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं उनमें गंभीरता भी बनी रहे।
1: हमारी बातों पे लोग अपना देखने जाते हैं
0: जी।
1: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को मैं सबसे पहले वर्ल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया कि आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को जो क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें, तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। तो वो जो हमने दौर देखा है हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ
0: जी। यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है और पुरस्कार विजेता जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
2: श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में
0: जी।
2: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख के कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है
0: जी।
2: लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है जो भी चीजें वो केवल खेल तमाशा नहीं है
0: जी।
2: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है।

0: युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप
1: जी
0: उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं,
1: जी
0: केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्में कुछ आती हैं, वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से। तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है। सिनेमा तो
1: जी
0: फिल्म, अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिखते हैं कि हमें पसंद आ गई? या क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है।
1: जी
0: फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है। जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे। पहली
1: जी
0: सूचना आप देते हैं फिल्म की गुणवत्ता के बारे में, आप उसमें बताते हैं, हाँ ठीक है, फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए
1: जी
0: ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां हैं तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के
1: जी
0: संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर वॉर मूवी से कर दें, और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें,
1: जी
0: ऐसा नहीं होता। ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती।
1: जी तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे,
0: जी
1: कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत।
0: आनंद आश्रम का एक गाना है,
1: जी
0: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में।
1: जी
0: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी
0: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाएं तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं
1: जी
0: उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा।
1: जी ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।